सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

Radio Olive 106.3 FM. Gio Bendaz. 106.3 FM.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM बिंदास।
1: Uno, dos, tres, cuatro.

FM, Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: Tanisha. ये जवानी है दीवानी से मोहित चौहान की आवाज में इलाही ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. 21st ऑफ सितंबर मंडे का दिन, कैसे हैं, क्या हाल चाल है. आई होप कि सब बढ़िया हो, कल का दिन बहुत अच्छा गया हो. इस वक्त जो उठ चुके हैं, वेरी गुड, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और जो ऑलरेडी काम के लिए निकलने लगे हैं, अगर वक्त है तो एक छोटा सा मैसेज गुड मॉर्निंग का हो जाए. और जो निकल चुके हैं और ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आप या तो पैसेंजर प्रिंसेस बन के बैठे हैं और प्रिंस बन के बैठे हैं, तो भी मैसेज कर सकते हो ना 3311 1063 पर.

0: जब दो खूबसूरत आवाजें मिलती हैं तो ऐसा ही मास्टरपीस बनता है यार। What am I without a hint of nostalgia? मतलब मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बात भी करी थी ना कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं नॉस्टैल्जिया में ही जीती हूँ। ऐश्वर्या राय क्या खूबसूरत लगी है इसमें। ब्यूटीफुल गाना और साथ में श्रेया घोषाल जो आ गई हैं, कमाल हो गया भाई। गॉड ये दिल पे प्रतीक कुहाड़ और अंकित तिवारी का खूबसूरत गाना। अंकुर तिवारी, अंकित तिवारी, आई हैव टू चेक, भूल गई हूँ मैं, बट बड़ा प्यारा गाना है। इफ यू हैवंट लिसन टू इट, आज सुनना, आपको मजा आ जाएगा सुन के। और बाकी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जी बेबो का बर्थडे। यस, 21 सितंबर मार्क्स करीना कपूर बर्थडे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग द ओजी बेबो ऑफ बॉलीवुड, यू नो, जिन्होंने हमें खुद से प्यार करना सिखाया है, खुद का फेवरेट होना सिखाया है। काफ़ी चीज़ें आई रियली लाइक अबाउट करीना, दैट यू नो शी डज नॉट केयर। मैं ऐसी हूँ तो मैं हूँ, आपको प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक ये एटीट्यूड हम सबको लेकर चलना चाहिए, अनटिल और अनलेस वी आर हार्मिंग समबडी। हाँ, वहाँ पे एक हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो बिंदास जी हो यार लाइफ में।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, हमें सिखाया कि
1: मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस फुल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: नमस्कार मैं हूं आर माधवन
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

पापन और मोनाली ठाकुर की आवाज एकदम लगा के हैशा मूवी से बड़ा सुंदर गाना मोमो के धागे ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और मैसेजेस पढ़ लेते हैं जो आए हैं। नाजरी जी का मैसेज आया है, कहती हैं द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। एग्जैक्टली, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई और आप पे क्यों ही भरोसा करेगा, बताओ मुझे। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ, यू नो, खुद से ही चेंज शुरू होगा और खुद से ही कोशिश धीरे धीरे, यू नो, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा फिरता है, वही है, बस एक एक दिन का एफर्ट डालते जाओ एंड इवेंचुअली समथिंग बिग विल टर्न आउट। एंड अबरार जी का गुड मॉर्निंग आया है हमें, साथ में संतोष जी का भी गुड मॉर्निंग आया है और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है, स्क्रोल कर रही हूँ, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग, एवरी सनराइज इज गॉड्स वे ऑफ सेइंग आई एम विद यू, बी ग्रेटफुल, स्टे होपफुल, कीप मूविंग फॉरवर्ड। हाँ जी, जुल्फी जी का भी गुड मॉर्निंग है यहाँ पे, इफ गॉड कैन टर्न अ नाइट इनटू डे देन ही कैन टर्न योर बर्डन्स इनटू ब्लेसिंग्स, इनडीड ही कैन, बस आपने ना बिलीव रखना है और कुछ नहीं, बाकी सब चंगा है जी। मोहम्मद असलम साहब का मैसेज आया है, देन आई हैव अ मैसेज फ्रॉम मोहम्मद अरमान, गुड मॉर्निंग जी। यासीन अब्बासी जी का भी मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग सबको जी, आई होप एवरीबॉडी इज हैविंग अ फैंटास्टिक मॉर्निंग। और क्या खूबसूरत सनराइज होता है यार आजकल, दोस ब्यूटिफुल ह्यूज ऑफ रेड, यू नो, स्लाइटली पिंक, ऑरेंज, येलो, ऑल दोस ब्यूटिफुल कलर्स, इतना प्यारा लग रहा होता है जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रही होती हूँ, आई सी ऑलरेडी हो चुका होता है सनराइज, बट यू नो वो एकदम ऐसे अपने पीक पे क्रेजी वाली जो रेज हमें दे रहा होता है ड्यूरिंग द डे वो नहीं आती है, तो ये ब्यूटीफुल ह्यूज देखने को मिलते हैं, इतना सुंदर लगता है ना देख के। अगर आपने भी विटनेस किया है और आपको मौका मिले कि कल आप मुझे पिक्चर क्लिक करके भेज दें तो भेज दीजिएगा, ठीक है? और स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness. Ab fitness pakki hai.
2: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

लाइफ इन मेट्रो से केके की आवाज में हो मेरी जान, ब्यूटीफुल गाना और केके की आवाज यार, वो तो जनरेशंस के लिए है लिटरली। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनीषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और आज कोई मोटिवेशन विजडम नहीं लेकर आई हूँ मैं, मैंने कुछ पढ़ा है बड़ा सुंदर सा, इट्स अ शेयर बेसिकली, तो मुझे शेयर करना है वो आपसे। जी हाँ सुनिए, अर्ज किया है, इसीलिए तो इतना भाती हो तुम, इसीलिए तो इतना भाती हो तुम, कितने सच्चे दिल से झूठी कसमें खाती हो तुम। ओए ओए ओए, कत्ल ही कर दिया। देन देयर इज अनदर वन विच आई एब्सोल्युटली लव एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस लाइक टू मच नाउ दीज डेज। सो वो शेर ऐसा है कि ये जो दिल की सुनते हो ना तुम दिमाग वालों से हार जाओगे मेरी जान। अरे यार बहुत ही प्यारा लिख देते हैं यार लोग। आई ऑलवेज एनवी पीपल हु कैन यू नो राइट डाउन देयर इमोशंस, जो ऐसे यू नो खूबसूरत शब्दों में इतनी गहरी बातें एक्सप्लेन कर जाते हैं, और वो भी बहुत यू नो मिनिमम यूज ऑफ वर्ड्स में, बहुत खूबसूरत। अगर आपका कोई फेवरेट शेर है तो आज हो जाए यार, आ जाओ मैसेज कर दो 3311106 पर एक प्यारी सी, आपका कोई भी फेवरेट शेर शायरी व्हाटएवर इट इज, यू नो यू कैन जस्ट शेयर इट विद मी, आई वुड लाइक टू रीड, आई लव रीडिंग दैट। सो या सेंडिंग श्रेया घोषाल की आवाज में ओ बे खबर फ्रॉम द मूवी एक्शन रीप्ले, स्टे ट्यून्ड।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

प्रतीकगढ़ और अंकित तिवारी, अंकुर तिवारी की आवाज़ में, बेचारे अंकुर तिवारी को मैं हमेशा अंकित तिवारी बोलती हूँ, सिंस द टाइम आई हैव डिस्कवर्ड हिज म्यूजिक, सो यार देर इज अ प्रॉब्लम। तनीषा के साथ यहाँ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। स्लोली हौले हौले हो जाएगा प्यार मेरी जान। इट इज़ 32 डिग्रीज राइट नाउ बट इट फील्स लाइक 43 एंड दिन में प्लेंटी ऑफ सनशाइन आपको मिलने वाली है। पर मेट डिपार्टमेंट ने कुछ बहुत बढ़िया बात कर दी है, वो ये कि कल जो है अल जुबारा स्टार का राइज हो चुका है, तो अभी 13 डेज का जो पीरियड है इसमें ये कूलिंग ऑफ पीरियड हो रहा है हमारा।

0: ट्रांजिशन वाला एकदम. दिन में तो गर्मी रहेगी लेकिन रात में थोड़ा ठंडा हो जाएगा माहौल एंड इवेंचुअली द वेदर विल बी प्लेजेंट. बट ये जो ट्रांजिशन वाला वेदर है ना ये काफ़ी स्केरी होता है एंड इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. बहुत ज़्यादा यू नो वायरल फ्लू कोल्ड इन सब की गुंजाइश रहती है इसमें. मैं ऑलरेडी इसकी जकड़ में आ चुकी हूँ तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, जितना भी ऐसे अपने आप को कवच बना लो अपने आसपास एक की भाई मुझे कोल्ड ना छूले कहीं से भी. ठीक है, वो करो. हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. ख्याल रखो अपना, ऐसे एकदम से धूप में से आ रहे हो ठंडा पानी नहीं पीना. आई डोंट डू दैट प्लीज, बिकॉज ये वाला जो कोल्ड है ना इट स्टेज फॉर अ वाइल. ये चिपक जाता है भाई, इसको मोहब्बत हो जाती है आपसे, ये छोड़ के नहीं जाता है. तो दैट इज़ वाई आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट दैट. बी वेरी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आप इंपॉर्टेंट है मेरी जान. सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज में मिर्ज़ापुर से वारू. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Hour. Yeah.

0: आशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

बॉस मूवी से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. अरे अरे ना छेड़ दर्दनु. You are listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं. पर मैं तो नहीं हो सकती क्योंकि सिल्की तो नहीं है भाई. यहाँ का पानी जब मैं आई थी ना इतना क्रेजी हेयर फॉल हुआ था, फिर थोड़ा आदत हो गई थी. अभी आई थिंक क्योंकि ट्रांजिशन वेदर, इसकी वजह से क्रेजी हेयर फॉल हो रहेगा. कोई रेमेडी तो मुझे बता.

0: ब्यूटिफुल ट्रैक एंड दिस वन. ये मूवी मैंने देखी है जिमी शेरगिल के लिए है कि इस गाने में मैं उन्हें डांस करता हुआ देख सकूं.
1: जागे जागे अरमा है जागे जागे हम ओ.
0: कितने क्यूट यार, पर उनके साथ हमेशा गलत होता है. हमेशा हीरोइन किसी और के साथ चली जाती है यार. All these tracks are lined up for you in this hour. और फिलहाल वक्त है जी हाँ. सो आज का लेम जाम्स का सवाल काफी लेम, काफी आसान जी. द क्वेश्चन इज, अगर बहन सिस्टर रो रही है तो उसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अगर बहन रो रही है तो उसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. 3311 1063 पर बताएं या फिर कॉल कर दे 4444 1063 पर. अगर बहन रो रही है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक वर्ड का आंसर है, ठीक है? सोचो और बताओ. सुनते रहिए रेडियो ऑल एव, सेंडिंग अखिल सच देवा की आवाज में. पिया घर आया जियो बिंदास.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: हर सुबह 6 से 10 हर जिस दिन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: स्वीडी से कौन नच दी ओली ऑन रेडियो 106.3 एफएम त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर सलीम जेम्स का आज का मेरा सवाल एकदम आसान था और मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है मुझे भर भर के जवाब आ गए और एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं सबने सो द क्वेश्चन वाज अगर बहन रो रही हो तो उसे इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहेंगे एंड वी हैव गॉट द आंसर्स ओवर हियर मुझे पुण्य जी का मैसेज आया है सोनी अथर्व एंड देन देयर इज अ स्टार जी उनका नाम स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे एक नाम है रिस्पेक्ट ओके सर जी देन वी हैव वामसी हियर साइमन का मैसेज है और सूरज का मैसेज आया हुआ है मोहम्मद का मैसेज है शहबाज इज देयर इमाद इज देयर एंड यस द करेक्ट आंसर इज क्राइसिस आई नो इट्स लेम बट दैट्स द जिस्ट ऑफ इट राइट कि थोड़ा इसे मूड लाइटन हो जाए ना मॉर्निंग में अदरवाइज हम उठते हैं और हमारे दिमाग में होता है कि भाई ये काम करना है वो काम करना है आज के दिन में ये फिनिश करना है आज के दिन में ये टारगेट है और यू नो सुबह से इतना स्ट्रेस ले लेते हैं तो पूरे दिन में तो वो चलेगा ही ना कैरी ऑन होके तो थोड़ा लाइट रहने का यू नो चिल रहने का लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम वन डे को भी छोड़ो स्टेप ओके इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला है काम तो उसी समय पर होगा ना जब होना है अभी सोच सोच के मैं बैठ जाऊंगी कि मुझे कल ये काम करना है और आज स्ट्रेस ले रही हूँ मैं उसके लिए क्या मैं आज कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ना सो देयर इज नो सेंस तो थोड़ा रिलैक्स करो मेरी जान देखो आधी दुनिया खतर में यहाँ पे रेक्स के पीछे पड़ी हुई है आपने कोशिश करी ढूंढने की कि नहीं बताओ मुझे 3311063 पर सेंडिंग दिल दिया गला आतिफ असलम की आवाज में स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास
1: अब सुनिए

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू.
1: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
3: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
1: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: तनिषा
1: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में मेरी यार की शादी है मूवी से रेशम सी है ये हवाएं सनम जल्दी होंगी सनम जल्दी यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग बेबोस बर्थडे टुडे करीना कपूर इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एंड अभी एक करीना कपूर स्पेशल गाना आने वाला है आपके लिए द सॉन्ग इज यू आर माई सोनिया फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम अलका याग्निक और सोनू निगम की ही आवाज में एंड यू नो व्हेन करण जौहर वाज कास्टिंग for this movie K3G he saw Kareena Kapoor in a party and he was like yeah she's my boo Karan ne unhe dekha and he was so struck by her beauty ki bhai ye perfect hai us character ke liye aur bahut kamal kaam kiya matlab crazy overacting thi kind of annoying but that was the gist of poo you know she did not care she just lives in her own world and she knows how to love herself how to please herself and how to be That's all. And it became an iconic character. It added another beautiful layer to the movie. Also, jo gana hai, You Are My Sonia, uski jo, you know, thodi bahut tune hai, wo match karti hai, Badshah ke us gaane se, wo ladki jo sabse alag hai. Kyunki same rhythm pe sample hua hai. Ji haan. Well, sending this beautiful track your ways with the radio olive, Jio Bindas.
2: Kaun hai ye, jisne dobara mudke mujhe nahi dekha?
3: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू जिन्होंने हमें सिखाया कि
4: मैं अपनी फेवरेट
3: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड कतर ने अपना पहला मेडल जीत लिया है आईटी नागोया 2026 एशियन गेम्स में. अब्दुल रहमान अब्दुल हामिद ने जीता है सिल्वर मेडल इन द मेंस अंडर 60 केजी कराटे कैटेगरी. एंड 20th सितंबर दैट इज यस्टरडे ही वन दिस मेडल. एंड दिस वन इज कतर्स फर्स्ट पोडियम फिनिश एट द गेम. सो इट इज सच अ ह्यूज डील एंड फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल. और इसके बाद यू नो एक बार खाता खुल गया फिर तो सब अपने पास ही आना है इंशाल्लाह. गुड लक टू ऑल द एथलीट्स हु हैव यू नो गॉन देयर एंड बहुत मेहनत की है उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं. सो वी जस्ट होप कि वो ढेर सारे मेडल्स लेकर वापस आए. फिलहाल मैं आपके लिए भेज रही हूँ साज बटर सुबोध की आवाज में आवारा पंटू से तेरा मेरा रिश्ता पुराना. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.

स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: हमेशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैजराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: ससिकाल जी मैं हां हरभजन मान
5: हरभजन मान

0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

Suniti Chauhan ke awaaz mein yaar hum absolutely beautiful track, love everything about this song. Tanisha ke saath hai aap Radio Olive 106.3 FM par, Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par, and VCU Arts Qatar ne announce kar di hai nayi scholarship worth $40,000. ji haan, ye jo merit based scholarship inhone announce kari hai, that is for the students applying for 27 and 28 academic year. Scholarship is worth $40,000, that is 146,000 Qatari riyal per year. 5 scholarships di jayengi har saal, har academic year mein, and it is for new undergraduate students entering VCU Arts Qatar. The scholarship can cover tuition, may also help with housing or essential academic or living expenses depending on the approval. Okay, and jo students hai unhe separately apply karne ki zarurat nahi hai, jitne bhi eligible applicants hai wo automatically iske liye consider kiye jayenge. Selection jo होगा वो एकेडमिक और क्रिएटिव एक्सीलेंस के बेसिस पे होगा, एंड जो एप्लीकेंट्स हैं दे मस्ट हैव जीपीए ऑफ 3.30 और हायर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, आईएलटीएस स्कोर 7 प्लस होना चाहिए, टॉफल 90 प्लस और डुओलिंगो 130 प्लस, बीएफए एप्लीकेंट्स मस्ट आल्सो सबमिट अ स्ट्रांग पोर्टफोलियो. प्रोग्राम्स जो है इसमें स्कॉलरशिप में जो आने वाले हैं वो है आर्ट हिस्ट्री एंड बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स विद बीएफए मेजर्स इंक्लूडिंग ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, पेंटिंग प्लस प्रिंट मेकिंग एंड काइनेटिक इमेजिंग. जो प्रायोरिटी एप्लीकेशन डेडलाइन है वो नवंबर 15 है और फाइनल डेडलाइन है जनवरी 15. तो गुड लक मेरी जान.

0: हनी देख रहे हो, हनी सिंह से सीधा शफकत इमानत अली साहब पे आ जाते हैं हम।
1: मेरा शर्माना मेरी जान ना करी, रख लूं छुपा के तेरी यादें सभी।
0: And do all these amazing tracks are lined up for you in this hour, so the Radio Olive, to you and us.
2: Awesome.
0: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
2: Cool Song.

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिरयानी खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: फाल्कन फिटनेस मैसिव सेवेंथ ब्रांच इज नाउ ओपन एट अल्ड्रियान. हाईटेक जिम, किलर वर्कआउट एंड एब्सोल्युटली जीरो एक्सक्यूजेस. फाल्कन फिटनेस, अब फिटनेस पक्की है. स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं. स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए. The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर. ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार. ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026. द Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: Tanisha. Tanisha.
1: Shafqat Amanat Ali sahab ki awaaz mein teri rehna from the movie My Name is Khan only on Radio All of 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur bhai Kareena Kapoor ka birthday celebrate kar rahe hain hum. Abhi I'm going to play Jab Vi Met Se Mauja Hi Mauja. Bada hi kamaal gaana aur what an iconic movie. Love love love this movie. Matlab everything about the movie, the direction, the storyline, the acting, the characters, even the side characters were so funny. It was really good. So let me tell you something very interesting about it. So jab ye movie ban rahi thi na, producers ne sabse pehle Bobby Deol ko choose kiya tha to play Shahid Kapoor wala character. And they wanted ki hum Kareena ko le, lekin Bobby Deol ne kaha, आप क्रोनोलॉजी समझिएगा ठीक है. बॉबी देओल ने कहा कि इम्तियाज अली बहुत बढ़िया चॉइस रहेंगे एज अ डायरेक्टर, आप उन्हें लीजिए. एंड इम्तियाज वॉज कीन कि हमें करीना कपूर चाहिए इस कैरेक्टर के लिए. गीत एकदम परफेक्ट रहेगा, करीना पे सूट करेगा एकदम और वो बढ़िया तरीके से निभा पाएंगी ठीक है. पर जब करीना कपूर के पास गए तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं इम्तियाज अली से नहीं मिलूंगी. कौन है ये आदमी? व्हाई शुड आई मीट हिम? मना कर दिया उन्होंने, मैं नहीं मिलने वाली ठीक है. And then they went to Preeti Zinta, and Preeti Zinta was a bit busy. She could not take out time. Like unko kuch 6 months aur chahiye the, uske baad wo time de paati, dates de paati. So they were like, "Nahi, ye to bahut der ho jayegi." Fir somehow you know, kaise bhi karke producers ne Kareena Kapoor ko manaya. Wo Imtiaz Ali ke saath kaam karne ke liye maan gayi. Par ab unhone shart rakh di ki main nahi karungi Bobby Deol ke saath movie. मैं करूंगी शाहिद कपूर के साथ मूवी, क्योंकि उस वक्त शाहिद और करीना डेट कर रहे थे. सो शी वाज लाइक, यू हैव टू टेक माय बॉयफ्रेंड इन दिस मूवी, अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग इट. और हो गया. बॉबी देओल को पता नहीं है उनके पीछे ये सब हो चुका है. ही इज नॉट अवेयर कि वो अब इस मूवी का पार्ट ही नहीं है. एंड यू नो द प्रोड्यूसर्स हैव हायर्ड इम्तियाज अली टू डायरेक्ट इट, शाहिद कपूर एज द मेन लीड, एंड करीना कपूर एज द मेन लीड टू. एंड या दैट्स हाउ जब वी मेट यू नो केम टू अस. एंड इस मूवी का नाम पहले गीत रखने वाले थे, देन दे थॉट मेल ट्रेन ऐसे कुछ वियर्ड वियर्ड से नाम, बट थैंक गॉड जब वी मेट रखा. सूट्स ना बहुत ही बढ़िया मूवी है यार, अब मेरे को देखने का मन कर रहा है ठीक है. उसके बारे में सोचते हैं, फिलहाल गाना सुनते हैं मौजा ही मौजा ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ थ्री बिंदास.
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
3: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
2: मैं अपनी फेवरेट
3: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

0: Cagayan de Oro number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: हर सुबह 6 से 10 हर जिस दिन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह। गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

Alicia Chinoy here, as Mikhail Love Story movie say, it's rocking only on Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड प्रिंस ने मुझे मैसेज किया है कि यस्टरडे ही वॉज लुकिंग फॉर रिक्स, नहीं मिला है. कुछ पता चला क्या अभी तक? यार कोशिश तो मैंने भी करी थी, ऐसे ना टीम डिवाइड कर ली थी हमने यहाँ ऑफिस में कि आप लोग इस एरिया में ढूंढो, आप इस एरिया में ढूंढो, पर किसी के हाथ नहीं लगा. सेम टू सेम यू नो दैट जिंजर कैट्स हमें मिली, पर सब खौफ में ही है इस वक्त. उन्हें सबको पता चल चुका है कि भाई हमारे पीछे पड़े हुए लोग. एंड एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर रिक्स. किसी को मिले तो बता देना और डिवाइड कर लेंगे यार थोड़ा थोड़ा. चुपके इतना क्या कर लोगे हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना, हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू, इफ यू हैवंट सीन, देर इज अ न्यू टीजर एंड अ ट्रैक ऑल्सो हैज कम आउट. ये प्रेम मोलिया मूवी का, यस, कौन से प्रोडक्शन हाउस की मूवी है ये? प्रेम नाम से पता चल जाना चाहिए. राजश्री प्रोडक्शंस, यस, दैट यू नो होमली और लविंग फैमिली वाइव्स एंड ऑल दैट. जो मम्मी पापा के साथ बैठकर आप देख सकते हैं आराम से मूवी, वैसी वाली एक मूवी फाइनली आ रही है. आयुष्मान खुराना और शर्वरी है उसमें, और शर्वरी इतनी खूबसूरत लग रही है. ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल. ऑल्सो एडिट्स फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें आप अपनी रील सबमिट कर सकते हैं. यस, ओरिजिनल रील बनाइए, उसे सबमिट कीजिए. कुछ 10 से 12 रील्स जो हैं वो सेलेक्ट होंगी. देयर इज अ ज्यूरी, प्रॉपर ज्यूरी है वहाँ पे. दे विल सेलेक्ट आपका कंटेंट कितना ओरिजिनल है, कितने बढ़िया तरीके से आपने

इंस्टाग्राम का जो एडिट्स ऐप है उस पर एडिट किया है, उसके बेसिस पर आपकी रील सेलेक्ट होगी और वो फिल्म फेस्टिवल में चलाई जाएगी। जी हाँ, तो अगर आप है एडिट्स एंथुजियास्ट क्रिएटर तो जाइए बना लीजिए और सबमिट कर दीजिए और सुनते रहिए रेडियो 3 बिंदास।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz 106.3 Radio Olive Gio Bendaz Shack Man ki power packed range heavy trucks tippers trailers aur boom trucks damdar performance aur bharosa sirf Carmel ke saath visit Carmel Group now
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: तन्नीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: नया मसीन की आवाज में काला डोरिया only on Radio Olive 106.3 FM. तनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर.
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
1: तो आज का जो वर्ड मैं लेकर आई हूँ वो हम सब कभी ना कभी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं. सो नाम तो किसी ना किसी का जहन में आएगा आपके, ठीक है, जब मैं वर्ड बताऊँगी. सो द वर्ड इज़ फजल, FUDGEL, फजल, विच बेसिकली मीन्स टू प्रिटेंड. करना नहीं है या फिर बिल्कुल ऑनेस्टली काम नहीं करना है पर प्रिटेंड करना क्या हो रहा है, मैंने तो अपनी जान लगा दी है इसमें, सारा ऐसे यू नो ब्लड स्वेट एवरीथिंग इज देयर इन दिस वर्क, बहुत मेहनत करी है मैंने इसके ऊपर. प्रिटेंड करना जी काफ़ी लोग करते हैं. कभी कभी ऐसे होता है ना ऑफिस में, हम बैठे हैं आज काम करने का मन नहीं कर रहा यार, बट यू कैन नॉट जस्ट से दैट ना ऑफिस में, इतना तो नहीं चल पाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा मैनेजर को, तो यू जस्ट प्रिटेंड कि भाई मैं हाँ मैं कर रहा हूँ काम, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरी ये एक्सेल शीट बन रही है, मैंने ये डॉक्यूमेंट बना दिया, मुझे इतने मेल करने हैं, वो सब कर लेते हो आप सिर्फ प्रिटेंडिंग, एक्चुअली कोई काम नहीं हो रहा होता है. दैट इज़ ऑल्सो फजल फॉर यू. सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फजल दैट वर्क, ये जानना चाहूँगी. रोज़ मत बोल देना ठीक है, और बोलोगे तो मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, डोंट वरी. आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है यार, आपने स्ट्रेस नहीं लेना होता उस बात का.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाज में धक धक करने लगा है। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, तरीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। टेक्नोलॉजी में भाई आपके लिए है एक अवेयरनेस का मैसेज, क्योंकि नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि कोई भी फेक मैसेज या फिर यू नो ईमेल आ रहा है एंड इट इज़ प्रिटेंडिंग कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज से है, तो उसको एकदम से एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले यू नो प्रॉपर जाँच पड़ताल कर लो कि वो एक्चुअली रियल है या नहीं। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसमें जिसके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अवेयर अबाउट दैट एंड कॉन्शियस अबाउट दैट। ये जो मैसेजेस हैं इनमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस लिंक्स हो सकती हैं, आपने गलती से भी उसको क्लिक कर लिया, और इफ़ देर आर अटैचमेंट्स उन्होंने डाउनलोड कर लिया, आपके फ़ोन हैक हो सकते हैं एंड यू नो दे कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन यू, योर अकाउंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग, एंड वी डू नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन टू यू। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल मेरी जान वाइल एक्सेसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड अपना ख्याल रखें। और आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि यार इतनी मेहनत से हम कमा रहे हैं राइट, ऐसे ही स्कैम में चला जाए, कितना दुख होगा यार। सो उसके लिए अगर थोड़ा सा अवेयर रहने की, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू दैट फॉर योरसेल्फ, ठीक है? और सुनते रहिए रेडियो ऑल एम, ठीक है बिंदास।
1: अब सुनिए

0: Shack Man ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

You're listening to Radio Olympus 6.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द स्कैम मैसेजेस एंड ऑल राइट. नुमान जी का मुझे मैसेज आया है कि उनके 3000 रियाल इसी तरह से स्कैमिंग की वजह से चले गए हैं. आई होप यू हैव यू नो कनेक्टेड विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड आई होप यू गेट योर मनी बैक. बट गाइज प्लीज बी वेरी केयरफुल, दीज स्कैमर्स हैव बिकम टू स्मार्ट, सो हमें भी काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है. अलॉन्ग विद दैट I just want to remind you guys ki if you haven't followed us yet, radioolive.qs ye handle hame follow kar lijiye Instagram aur Facebook par, aur jo podcast aap yahan par sunte hain, jo snippets aap Instagram pe dekhte hain, uska full conversation agar dekhna chahte hain to hamare YouTube par jaiye, wahan par aapko pura conversation milega aur bahut hi you know kamal kamal ki inspiring conversations hai wahan pe bahut hi kamal logo ke sath. To zarur check out kijiyega. Also if there's any you would like to share, you know the number, right? 3311-1063 or you can call 4444-1063. Stay tuned, Andrew Bindas.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: The Sand ki awaaz mein Surma movie se beautiful track Ishq ke diye baaj gaye only on Radio Olive 106.3 FM Tanisha Hab ke saath mein 10 mornings chal rahe hain yahan par aur waqt ho gaya mere jaane ka meri jaan kal subah 6 baje milenge Tuesday ka din ekdam full positivity aur enthusiasm ke saath I just hope you guys have an amazing day today theek hai koi bhi chhoti modi baat ho na to aise dil se nahi lagana na dimag pe to bilkul hi na lagana warna sochte hi reh jate hain pura din waste ho jayega yaar नहीं करना है वो सब ठीक है जस्ट लेट इट गो और कुछ भी बात हो आप शेयर करना चाहते हैं तो 3311063 पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं वी आर ह्योर टू लिसन टू यू ठीक है हैव एन अमेजिंग डे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस बात को कभी नहीं भूलेगा फिलहाल जाते जाते भी बेबो का एक कमाल गाना भेज के जा रही हूँ आपके लिए वीरे दी वेडिंग से वीरे ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू हमें सिखाया कि
1: मैं अपनी फेवरेट
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

देखो जैसे आप सरदर्द की दवाई खाते हो तो थोड़ा सा यू नो नींद वाला इफेक्ट जो है वो 1-2 घंटे तक रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा जो है इफेक्ट वीकेंड का जो है वो मंडे तक तो खींच के देखो आ ही जाता है। हाँ जी वेलकम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, आज भी हम आए हैं बहुत सारी अलग अलग बातों के साथ। कल के मुताबिक थोड़ा सा गला जो है और ख़राब हो गया है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अब कल का दिन जो है वो और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं कैसे हमें बिल्कुल सरप्राइज़ कर देता है कि आप देखो कल के दिन से बुरा बन के दिखाऊंगा। आज जो है आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है और बिल्कुल रिकवरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे बातचीत करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, बिकॉज एक ही चीज़ तो आती है बात करना, और वो भी हम कैसे रोक दें। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Al Khor.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: Hello to all the listeners of Radio Olive.

0: आपके किसी भी फेवरेट स्पोर्ट में आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है उससे आप बहुत उम्मीदें लगा के रखते हो कि यार ये अब नेक्स्ट मैच में बहुत अच्छा खेलेगा, अगले मैच में और अच्छा खेलेगा, लेकिन वो आपको हर बार डिसअपॉइंट करता है, लेकिन फिर भी आप उससे होप नहीं छोड़ते। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने भी इस मौसम से बहुत सारी होप लगा के रखी है। यस, आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है लाइफ मस्त शो लेकर आपके लिए, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ 106.3 रेडियो एलएफ पर। अब देखिए यार, इस मौसम से बहुत सारी होप है लेकिन ये होप पे जो है खरा नहीं उतर पा रहा है। 39 डिग्री सेल्सियस आज का भी हाईएस्ट टेम्परेचर है एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज का 31 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। अब देखिए यार, जहां एक दो दिन पहले तक 29 पर हम आ गए थे, 28 पर हम आ गए थे, वापस 31 पे आके काफी दुख सा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम ही तो है, बदल जाएगा। वैसे देखिए बहुत सारी अमेजिंग बातचीत जो है अभी मुझे करनी तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में गर्म पानी की चुस्कियां जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं जाती हूँ गर्म पानी पी के आती हूँ। आप नॉर्मल पानी, गर्म पानी, जो पानी पीना है पीजिए, लेकिन जरूर से पानी पीजिए, बिकॉज हाइड्रेशन भी तो पूरा करना है। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: तो मैं ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो मेरे एक दोस्त का, मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो है हैप्पी बर्थडे था, एंड ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं आई थिंक स्कूल में थी एंड शायद कोविड का टाइम चल रहा था, पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, एंड मुझे अपने दोस्त को जो है हैप्पी बर्थडे विश करना था। तो मैंने एक रेडियो स्टेशन के आरजे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि क्या आप मेरा ये जो हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज है ये रेडियो पे मेरे दोस्त को जो है वो सुना सकते हैं, बिकॉज मैं रेडियो बहुत सुनती थी एंड मेरे दोस्त भी रेडियो बहुत सुनते थे। तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं यार, हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो बस मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, कभी ना कभी मुझे मौका ज़रूर मिलेगा अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करने का रेडियो पे। आपकी कसूस हूँ मैं, लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखो यार, अब मतलब ये पता नहीं कैसा सा एक खुदा का एक करिश्मा है या फिर मेरा मैनिफेस्टेशन है। तो क्या हुआ कि जिस आरजे को मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था पैंडमिक के दौरान जब मैं स्कूल में थी, उसके बाद जो है कट टू कुछ सालों बाद मैं उसी आरजे के साथ स्टूडियो में बैठ कर शो कर रही थी एंड मैंने अपने दोस्त को जो है उनके साथ हैप्पी वाला बर्थडे विश भी किया था। सो ये एक लाइफ का सर्कल होता है जो चलता रहता है। लेकिन कभी जब कोई मुझे मैसेज करता है और ये कहता है कि यार कशिश मेरा ये मैसेज है मेरे लव्ड वन के लिए, प्लीज़ उस तक पहुँचा देना, तो मैं ना थोड़ी सी इमोशनल सी हो जाती हूँ और मुझे लगता है यार जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं नहीं कर सकती सबके साथ, क्योंकि सबकी मैनिफेस्टेशन मेरे जितनी स्ट्रांग नहीं होती ना कि सब जो है एक दिन उसी फेवरेट आरजे के साथ जो है माइक शेयर कर ले। सो इसीलिए एक मैसेज आया मेरे पास दुबई से, जिनके जो लव्ड वन है वो रहते हैं कतर में एंड उनकी लड़ाई हो गई है। सो बस मैंने सोचा कि यार क्यों ना इन्होंने जो हमें प्यारा सा मैसेज दिया है वो मैं उन तक पहुँचा दूँ। सो सर आपका नाम और उनका नाम मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन आपके आपसे जो है कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड लड़ाई जो है झगड़ा जो है वो तो देखो चलता रहता है, लेकिन बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आई नो हम वक्त वक्त पे ये बात भूल जाते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। सो एक बार बड़े ही प्यार से उनसे जो है बातचीत कर लीजिए, बाकी कोशिश करेंगे कि उनका रिक्वेस्टेड सॉन्ग भी आपके लिए प्ले करें। सो स्टे ट्यून और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
3: मैं अपनी फेवरेट
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: देखिए, जो लोग आपको थोड़े पसंद नहीं होते ना, उनके सामने आपने अक्सर फेक स्माइल दी होगी, लेकिन कभी जब आपको खुद का कोई वर्जन पसंद ना आए तो भी खुद के ऊपर जो है एक बार स्माइल कर लेना चाहिए। हाँ जी, आपकी कसूस हूँ मैं, लाइफ मास्टर शो आपके लिए लेकर आ गई 106.3 रेडियो अलिस्तर। अब देखिए यार, आज का जो स्ट्रेस कम करने का जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा फनी है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो बस आपको आईने के सामने जाकर खड़े होना है एंड अजीब सा फेस बनाना है, स्पेशली जो है फेक स्माइल करनी है आपको। जब आप अपने आप को फेक स्माइल करते हुए देखेंगे ना, तो यार थोड़ी देर के लिए तो आपको अजीब लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपको खुद पर हंसी आ जाएगी। एंड खुद पर हंसना, I kid you not, खुद पे हंसना जो है वो सबसे बड़ी मेडिसिन होती है, सबसे बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म होता है। सो सबसे पहले तो ये ट्राई कीजिएगा। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, और जैसे हमेशा कहती हूँ कि म्यूजिक से अच्छा हीलर और कुछ होता ही नहीं है यार, तो स्ट्रेस जो है उसे दूर भगाओ, अमेजिंग वाले गाने वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करते जाओ। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Song of the Year.

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: बिंदास टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय दानादल बहार द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
3: Hello listeners, my name is Rajpal Yadav and you are listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Olive. 106.3

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: देखो यार, मूवीज देखने के बाद तो आपको भी काफी बार मन हुआ होगा ना कि यार इसके जैसा बिजनेस करते हैं, या यार इस मूवी में ना कैफे था, हम कैफे जो है वो बनाते हैं, या इस मूवी में मूवी बन रही है, आइए हम मूवी बनाते हैं। सो ऐसे आइडिया सिर्फ आपको नहीं आते, जो उस मूवी में काम कर रहे हैं उन एक्टर्स को भी आ जाते हैं। जी आपकी कशिश हूँ मैं, शो आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए, विक्रांत मैसी जी ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है मुसाफिर कैफे नाम की एक सीरीज में। लेकिन अब देखिए, ये कैच जो है ये है कि इन्हें ये रोल इतना अच्छा लगा, ये सीरीज इतनी अच्छी लगी कि उससे इंस्पायर होकर इन्होंने सोचा कि यार मैं भी अब कैफे खोलूंगा, एंड बिल्कुल उसी एस्थेटिक्स के साथ जो है वो रखूंगा कैफे। अब देखिए ये बात भी है कि मुसाफिर कैफे नाम का ऑलरेडी एक कैफे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, सो वो कैफे तो नहीं, लेकिन उसी तर्ज पे और दो कैफेज जो है अलग अलग जगहों पर विक्रांत मैसी खोलने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके सभी बॉलीवुड एक्टर्स जो है, सिंगर्स जो हैं, वो अब कोई और स्ट्रीम जो है वो चुन रहे हैं। किसी ने ब्यूटी ब्रांड खोल लिया है, किसी ने जो है कैफे खोल लिया है, किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है, किसी ने क्लोथिंग ब्रांड खोल लिया है, क्योंकि सब जानते हैं देखो यार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे विक्रांत मैसी का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड अगर मुसाफिर कैफे सीरीज में जैसा कैफे दिखाया, अगर वैसे कैफेज होंगे हर जगह तो बहुत मजा आएगा। अब देखिए, मैं तो इस बात में लकी हूँ कि कतर में रहती हूँ, तो कतर में तो ऐसे कैफेज की कमी नहीं है। रिकमेंडेशंस हो आपके पास तो भेज दीजिएगा 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो विंदर
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
0: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
3: मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ओलिव विश करता है

देखो कतर आए हुए ना अभी मुझे ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, कतर आए हुए मुझे आई थिंक अभी 6 महीने हुए, एंड अभी मेजर 6 महीने जहाँ पे सबसे ज्यादा फन होने वाला है वो तो अभी बचा है। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑल एफ एम, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मास्टर लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, सबने मुझे कहा है कि कतर कितनी अमेजिंग जगह है, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितने फेस्टिवल्स होते हैं। सो सबसे मेजर एक चीज़ जो अभी अभी मुझे पता चली है वो ये है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने जो है अनाउंस कर दिया है अपना कतर बोट शो 2026 की टिकट्स ओपनिंग, यानी अब आप टिकट्स जो है इस इवेंट के लिए ले सकते हैं। नवंबर 4th से नवंबर 7th तक जो है ये किया जाएगा, एंड मुझे लगता है कि बहुत ही फन होने वाला है बिकॉज मैंने फोटोज देखे हैं कुछ एंड बहुत फन था। सो अगर ऐसे और इवेंट्स आपको पता है जो आने वाले हैं टाइम में तो वो भी यार मुझे रिकमेंड कर दो। आप लोग यार अच्छे अच्छे होस्ट बनो ना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास रेडियो।

ब्रो लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरे पिंटरेस्ट पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इवन व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लोग पहन पहन के एक केप की फोटो डाल रहे हैं, एंड वो केप ज्यादा कुछ बहुत ही बढ़िया नहीं है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड जो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी बेसिक लाइफ को जो है मस्त बनाने का मैंने जो है ठान लिया है, मैंने पूरा एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब देखिए यार, बेसिक आउटफिट को भी अच्छा बनाने का जो है दृढ़ निश्चय मैं हर रोज़ करती हूँ, लेकिन सेम टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, पैंट, स्कर्ट, टॉप, ये जो है पहन के मैं आ जाती हूँ, कुछ अलग नहीं हो पा रहा है। एंड वो अलग जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक केप से हो पाएगा। हाँ जी, ये जो एक पतला सा केप है एंड ये एक बस कपड़े का टुकड़ा है जिसको साइड में जो है बस सिल दिया गया है, एंड उसको जो है ऑफ शोल्डर करके नॉर्मल शोल्डर के साथ जस्ट ऊपर से जो है पहन लिया जा रहा है, एंड काफ़ी वायरल हो रहा है। एंड देखिए, अगर आप ये केप बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आप अपने घर पर एक स्कार्फ से भी बना सकते हैं। सो एक स्कार्फ को लीजिए और उसके दो अपोजिट एंड्स पे जो है सेफ्टी पिन से जो है उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, एंड बस उसे पहन लीजिए अलग अलग तरीके से। दैट्स द स्कार्फ, दैट्स द केप। तो बस जल्दी से एक बार ये हैक जरूर से ट्राई करना। बाकी अमेजिंग वाले गाने तो आ ही रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
3: फाल्कन फिटनेस मैसिव सेवेंथ ब्रांच इज नाउ ओपन एट अल्ड्रियान. हाईटेक जिम, किलर वर्कआउट एंड एब्सोल्युटली जीरो एक्सक्यूजेस. फाल्कन फिटनेस, अब फिटनेस पक्की है.
4: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर, दिस इज शाहरुख खान.
5: हाय, दिस इज अजय देवगन.
6: हाय, दिस इज अक्षय कुमार.
7: हाय, दिस इज अनुष्का शर्मा.
8: एंड आई एम अशोक वासी.
9: दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.

0: यार क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई हॉबी आपको परस्यू करनी हो लेकिन पैसों की कमी की वजह से या वक्त की कमी की वजह से आप वो हॉबी कर नहीं पा रहे हो और वो बहुत अनकॉमन सी हॉबी है लेकिन फिर किसी सेलिब्रिटी ने जो है फोटो डाल दी हो वो चीज़ करते हुए एंड आप सब लोग वही कर रहे हैं सो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ जी आपकी कसूस आ चुकी है 106.3 रेडियो ऑलिव पर शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ी एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार मेरे साथ ऐसा हुआ पॉटरी के साथ, तो बचपन से ना मुझे पॉटरी करना था एंड काफ़ी सारी मैंने वर्कशॉप्स भी ज्वाइन करी थी लेकिन मैं किसी ना किसी वजह से आगे परस्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कदर आगे करूँगी एंड यहाँ पर भी वक्त नहीं मिल पाया। फिर अभी रिसेंटली जो है कृति सैनन ने पॉटरी करते हुए जो है फोटो डाल दी है। अब जो है सब लोगों को पॉटरी करनी है तो अब सबको लग रहा है कि मैं जब बोल रही हूँ कि मुझे पॉटरी करनी है तो फिर सबको ऐसा लगता है कि मैं कृति सैनन से जो है इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कह रही हूँ। पर उन्हें अब कैसे जो है मैं यकीन दिलाऊं कि मुझे भी कटलरी बनानी है, मुझे भी वेज बनाने हैं, मुझे भी मग्स बनाने हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। आप बताइए कि सबसे बढ़िया पॉटरी वर्कशॉप जो है वो मुझे कतर में कहाँ मिलेगी। 3311063 पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए टू बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: तो जेंजीज अगर आप मुझे सुन रहे हो तो ये चीज आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके घर पर टिश्यू पेपर का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है तो उसे रीस्टॉक कर लो, रुमाल नए खरीद लो, टॉवल्स का जो है वो जखीरा जमा कर लो, क्योंकि सैयारा जैसी एक और मूवी आपको मिलने वाली है। हाँ जी, आपकी कशिश आ चुकी है लाइफ मस्त है शो लेकर आपके लिए 106.3 रेडियो ऑल पर। अब देखिए यार, आपकी कशिश आपको ये बताना चाहती है कि सैयारा मूवी देखकर जहां पर जितने भी जेंजीज थे वो फूट फूट के रोए थे, उन्हें रोने का एक और मौका जो है डायरेक्टर मोहित सूरी देने वाले हैं। सो यशराज फिल्म जो है वो आहान पांडे एंड अनीत पड्डा को लेकर एक और मूवी जो है वो बनाने का प्लान कर रहे हैं। सो अगर आप वो इंसान है जिसे सैयारा अच्छी लगी या जो है सैयारा देखकर रोना आया, तो एक और वैसी मूवी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट मंथ जो है मुंबई में इसका शूट जो है वो शुरू हो जाएगा एंड उसके बाद गोवा में भी इस मूवी का शूट होगा एंड 2027 में बेसिकली हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। तो फिर तैयार हो जाइए टिश्यू पेपर और रुमाल लेकर, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारा रोना पड़े। वैसे होप करते हैं कि इस बार जो है थोड़ी सेंसिबल लव स्टोरी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। बाकी प्यार में सेंस तो होता ही नहीं है, तो गलत डिमांड कर दी है तो हमने। बाकी आपकी डिमांड यानी आपके लिए अमेजिंग वाले गाने जो है वो हम लेकर आ गए हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव फॉर अमेजिंग वाले गाने। वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
3: मैं अपनी फेवरेट
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

मैंने कोई सवाल किया नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे जो लंग्स हैं उन्होंने जवाब दे दिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा खांसी आ रही है मुझे, लेकिन फिर भी सुधर

0: या हैंडल्स को जाके फॉलो कर लो, 3311063 नंबर जो है सेव कर लो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

फैट मैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ

Radio. Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas. Shack Man ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now. Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back to back gaane. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा।
1: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
2: मैं अपनी फेवरेट
1: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया एक रूल मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्वीडन में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो स्वीडन ने जो है अभी एक एक्ट को जो है एक ऑफेंस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है और वो एक्ट है अपने बिल्ली को घर में छोड़ देना। जी हाँ, अपने बिल्ली को घर में छोड़ के जाना जो है नाउ एक ऑफेंस बन चुका है, एक प्रॉपर जो है लॉ आ चुका है। और उसमें कहते हैं कि एक कैट को जो है रेगुलर चेक इन की जरूरत पड़ेगी, जनरली ट्वाइस विद इन 24 आवर पीरियड। और जो पर्सन केयर कर रहा है इन एनिमल के लिए वो मेक श्योर करे कि वो पेट जो है इंजर्ड नहीं है और कोई साइन ऑफ इलनेस नहीं दिखा रहा है, फ्रेश फूड का एक्सेस है, वाटर का एक्सेस है और एक सेफ एनवायरमेंट में जी रहा है। यूजुअली कैट्स जो है लो मेंटेनेंस पेट्स होते हैं, मगर स्वीडन ने मेक श्योर किया है कि इन लो मेंटेनेंस पेट्स को भी अच्छा खासा केयर मिले। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बिलियनर के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज की है। तो एक बिलियनर ने जो है एक लॉगिंग कंपनी खरीदी, और उस लॉगिंग कंपनी के अंडर में 4 लाख एकड़ की जमीन थी, और ये जमीन कहीं और नहीं, रेन फॉरेस्ट वाली जमीन थी। ठीक है, इस बंदे ने उस लॉगिंग कंपनी को खरीदा और उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया ताकि इस रेन फॉरेस्ट को कोई छू ना सके। भाई ये बंदा है हीरो। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स, समटाइम्स सम आर जस्ट बिलियनर्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा, The OG Pooh,
1: मेरा नाम मेरी है,
2: जिन्होंने हमें सिखाया कि
1: मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।
1: बेबो
2: दी ओजी गीत के गीत सुनिए सारा दिन।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक जापानीज फिनोमिनन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. सो इस फिनोमिनन का नाम है हिकिकोमोरी. इसको डिस्क्राइब करते हैं एक सिवियर सोशल विड्रॉल, जहां पे एक इंसान जो है हमेशा या तो अपने घर में रहेगा, स्कूल वर्क इन सबको अवॉइड करेगा, और काफ़ी लिमिटेड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो है लोगों से रखेगा. इवन खाना तक वो लोगों से नहीं लेगा, बोल देगा कि मेरे डोर पे छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना. मतलब ये ऐसे इंसान होते हैं जो दुनिया से थक चुके होते हैं, तंग आ चुके होते हैं. उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वर्क प्रेशर हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रीजंस के थ्रू जो है लोग जब गुजरते हैं, फाइनली वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि भाई अब संसार से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, बस अपने आप में रहना है. और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी होगी जहां पे एक कौवे को जब प्यास लगती है सामने घड़ा होता है, मगर घड़े में पानी जो है थोड़ा नीचे है और वो पी नहीं पाता, तो क्या करता है, आसपास से पत्थर उठा के डालता है, पानी का लेवल बढ़ता है, फिर वो पानी पीता है करके। इसी कहानी को जो है हम एक मॉडर्न तरीके से देख पाएंगे अब, क्योंकि स्वीडन में एक नई टेक्नोलॉजी वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे क्राउज को यूज करके वो सिटीज और स्ट्रीट्स को क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस मैं बताता हूं कैसे। तो एक बिन होगा जिसमें जो है क्राउज या फिर कौवे जो हैं वो जाके वेस्ट डालेंगे, लिटर्स डालेंगे, और नीचे से उनके खाने के लिए एक चीज निकलेगी। तो ये एक रिवॉर्ड बेस्ड मैकेनिज्म से इन्होंने जो है एनिमल्स को यूज करके, बर्ड्स को यूज करके कैसे सिटी को क्लीन कर सकते हैं, वैसा थॉट प्रोसेस निकाला है, वैसा टेक्नोलॉजी जो है वो निकालने वाले हैं। और सही में माय माइंड इज ब्लोन। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। अब सुनिए।

0: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
1: Only laga aur ho ja recharge. Olive Recharge.
2: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं पेंगुइन्स के बारे में काफी क्यूट एक चीज बताना चाहूंगा। तो एक पेंगुइन जो है अपने एक नॉर्मल डे में 10,000 बार जो है एक नैप लेता है और इनके नैप्स जो होते हैं यूजुअली 4 सेकेंड तक के होते हैं और ऐसे ही 10,000 नैप्स ये पूरे दिन लेते हैं ताकि उस दिन को गुजार पाए। सोच के देखिए यार, इंसान को अगर मौका मिल जाए ऐसा करने का तो कितना ही मजा आ जाएगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
0: Only recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे। वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL स्पेस अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्च में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
3: मैं अपनी फेवरेट
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.

0: 105 with RJ Sudeep, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindaas.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बात है 2020 की अगस्त 28 को अलास्का में एक बच्चे को जो है अर्जेंटली इवैक्यूएशन फ्लाइट लेना पड़ा कुछ मेडिकल इशू के कारण, और एयरपोर्ट का जो रनवे था वो जो है यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां के लाइट्स जो है फेल हो गए थे और मिडनाइट डार्कनेस के कारण प्लेन जो है टेक ऑफ नहीं कर सकता था। तो नेबर्स ने क्या किया, उन्होंने 32 फोन कॉल्स के थ्रू पूरे टाउन को जगाया और वहां के 70 रेसिडेंट्स जो हैं वो अपने पजामा पहन के गाड़ी में बैठकर आए और अपने कार को रनवे के साइड में लाइन अप किया और उन्होंने अपने हेडलाइट्स को ऑन किया ताकि रनवे में लाइट पड़े और वो प्लेन जो है टेक ऑफ कर पाए। सोच के देखिए यार, ये होता है कम्युनिटी, ये होता है एक साथ आना, हेल्प करना। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

Brought to you by Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जब भी हम ऐसे मॉल में या फिर कहीं पे ऐसे जाते हैं तो हमने देखा होगा कभी कभी क्लोथिंग स्टोर में एक मैनेक्विन को काफी बढ़िया तरीके से कोट सूट सब पहना के ऐसे रखा होता है, ठीक है। वो हमेशा स्टैंडिंग पोजिशन में होता है और किसी पोजिशन में हमने देखा नहीं होता। मगर जापान में जाओगे तो काफी वियर्ड पोजिशन में जो है या फिर वियर्ड पोजेस में इन मैनेक्विन्स को रखा जाता है ताकि स्टोर जो है ये पॉइंट प्रूव कर पाए कि हमारे सूट जो है आसानी से फटते नहीं है। आप कुछ भी करो, खोदो, खेलो, बैठो, दौड़ो, हमारे सूट बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे करके। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
1: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, लोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
3: मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

0: Malta's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 26. Communicate, connect and conquer.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive
4: recharge. Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
2: नंबर
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव
1: जियो बिंदास.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिरयानी खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: फाल्कन फिटनेस मैसिव सेवेंथ ब्रांच इज नाउ ओपन एट अल्ड्रियान। हाईटेक जिम, किलर वर्कआउट्स एंड एब्सोल्युटली जीरो एक्सक्यूजेस।

जो 4 घंटे रहेंगे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मेरे पे पूरा ध्यान दीजिए, पूरी अटेंशन दीजिए, मैं आपको पूरी अटेंशन दूंगी। इसी तरह से तो जिंदगी जो है वो चलती है। और खुश रहा करो यार लाइफ में ना। पता है मेरी दिक्कत ये है कि लाइफ में मेरी चाहे कुछ भी चलता रहे, मैं ना ज्यादा देर तक सैड नहीं रह सकती हूँ। तो लाइफ में ये मंत्र अगर आपने कर लिया ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ कि लाइफ में आप ना खुश रहोगे, क्योंकि हमारे पास 100 रीजन मिल जाएंगे हमको उदास होने के, लेकिन एक रीजन भी अगर मेरे को खुशी का मिलता है ना, अगर नहीं भी मिलता तो मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं खुश रहती हूँ यार, मुझे उससे एनर्जी मिलती है, उससे किक मिलती है। और आपको अब एनर्जी और किक दोनों मिलेगी, क्योंकि जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। सुनते रहिए रेडियो ओलिव कोर, कहते रहो जियो विंडास, हट जा।

0: Cagayan de Oro number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
2: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness. Ab fitness pakki hai.
3: Hello listeners, mera naam hai Rajpal Yadav. Rajpal Yadav. Aur aap sun rahe hain Qatar ka number one Hindi radio station, Radio Olive. 106.3 FM, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio Olive,
4: I'm number one. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

15 मिनट 15 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ है। कम ऑन सलमान खान आजकल बहुत ज्यादा कमाल कर रहे हैं यार, बिग बॉस में अलग लेवल का उनका सीन जो है वो चल रहा है। सो मैं भी उसी चक्कर में फंस गई हूँ जिस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था। हर रोज मैं आपको बिग बॉस की अपडेट जो है वो देती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है आपको अपडेट देखिए अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो। अगर आपको फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ बड़ा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए एक चीज जो है, अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम की दुनिया को देखना चाहोगे, इंटरनेशनल आइसक्रीम शो जो है वो मॉल ऑफ कतर में होने वाला है 24 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। शोज वगैरह आपको पता है कि इनके स्टेज पे रहते हैं, तो डेफिनेटली टिकट्स की कोई जरूरत नहीं है। अलग लेवल का आपको जो है वो इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है इस आइसक्रीम शो में। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट है इसको लेके कि क्या ही करेंगे ये, यू नो आइसक्रीम शो में किस तरह से होता होगा। मुझे लगता है कि कैरेक्टर बनते होंगे, उस तरह का कुछ सीन होता होगा, लेकिन खैर जब ये होगा तब देखने का मजा आने वाला है। फिलहाल तो मजे

0: 106.3 FM.
1: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 26. Communicate, connect and conquer.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

24 मिनट 40 सेकंड स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है। अगर आपकी इवनिंग जा रही है स्लो तो बेबी चलता है ना इस गाने पे, मैं इतना ज्यादा नाच नाच के सर हिला लेती हूँ ना कि मेरा खुद का सर ही घूमने लग जाता है और मुझे थोड़ा टाइम लगता है अपनी सेंसेस में वापस आने के लिए। इस तरह का पागलपन जो है वो मैं करती रहती हूँ, मुझे ऐसा पागलपन करना अच्छा लगता है। आप भी अपनी लाइफ में इसी तरह से रहिए, आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन ध्यान इधर उधर भटका तो किसी भी लिंक पे क्लिक हो सकता है और वो आपके लिए मतलब दुखदाई साबित हो सकता है, क्योंकि किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। अननोन अगर आपको कोई मेल आ रहा है, अननोन मैसेज आ रहा है, क्योंकि अपना नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला है, वार्निंग दी है कि भाई अगर आपको कोई ईमेल आ रहा है, यू नो अननोन सेंडर है कोई या टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि वेरीफाई करो कि कौन भेज रहा है ईमेल, है ना। उसके साथ साथ अगर कोई लिंक आ रहा है तो अवॉइड करो उस लिंक पे क्लिक करना, एंड अटैचमेंट दे के एक्साइटेड हो जाते हो उनको जो है ओपन करना बंद करो। अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपको लग रहा है सस्पिशियस है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यार नहीं ये गलत होने वाला है या गलत हो रहा है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 2347444 पर, जी हाँ 2347444 पर, नहीं तो आप ईमेल जो है वो भी कर सकते हैं ccc@my.gov.qa पे, जी हाँ इस पे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिएगा कि बाद में टेंशन हो जाए आपकी लाइफ में।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
4: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स जी बुक करें धरोहर मिस मत करना
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make your drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

भाई सर घूम गया बहुत गंदे तरीके से, इस गाने के साथ यही होता है मेरा हाल। ओहो सुनियो की दादी की हाल चल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल 5:47 स्टूडियो की घड़ी पे।

0: मौसम के बीच में और हमारे बीच में जो है ना ये ह्यूमिडिटी बस बनी हुई है, ये निकल जाए ना। कल हवाएं बड़ी तेज चल रही थी, जब मैं शाम को निकली तो बस हवाओं में ये जो ह्यूमिडिटी है ना वो काम खराब करती है। अभी ये टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज का होने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी है 59%। सो यार सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
3: मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हेवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड की 22nd September tak on www.thekatartalks.com par. Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है सिमरन कौर राव के साथ। देखो iOS 27 की अपडेट अगर आपने कर ली है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करी है तो कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। Siri AI ये जो है वो अभी आपके लिए और भी काम करेगी, जैसे कि मेल ड्राफ्ट करना, फोटो एडिट करना, मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा फ्रेंडली जो है वो आप लोगों के लिए हो चुकी है। अभी धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ इसके बारे में। Siri जो है वो अभी कैमरा में भी है, वो अपने हिसाब से अगर आप किसी फोटो को क्लिक करते हैं उसके ऊपर कैमरा कर रहे हैं आप, तो आपको उसके हिसाब से जो है वो जवाब दे पाएगी एंड उसके साथ साथ फोटोज भी एडिट करेगी आपके लिए। एंड उसके साथ साथ लिक्विड ग्लास डिजाइन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो भी सीन है। और बहुत सारी चीजें जो है वो यू नो सही हुई हैं। एयरपोर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं जो कि आप करेंगे ट्राई तो आपको धीरे धीरे समझ लगेगी। एंड पेरेंट्स के लिए चाइल्ड सेफ्टी कंट्रोल जो है और भी एक्सपेंड कर दिया गया है, मैप्स में भी चेंजेस हुए हैं। सो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इसमें हुए हैं। एंड फोटो एडिट वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है इसमें, और अभी तक इनफैक्ट मैंने ट्राई नहीं किया है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी कि क्या होता था कि पहले वीडियो से अगर हम कोई फ़ोटो ले तो हमको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि वीडियो पे अगर आपको कोई फ़ोटो चाहिए अच्छी क्वालिटी में तो वीडियो के राइट साइड में 3 डॉट्स पे जाके आप उस पे ऑप्शन आएगी तो वहाँ पर आप जो है वीडियो के थ्रू फोटो भी खींच सकते हैं। सो बढ़िया क्वालिटी में आपको फोटो मिल जाएगी थ्रू वीडियो।

0: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: फाल्कन फिटनेस मैसिव सेवेंथ ब्रांच इज नाउ ओपन एट अल्ड्रियान। हाईटेक जिम, किलर वर्कआउट एंड एब्सोल्युटली जीरो एक्सक्यूजेस। फाल्कन फिटनेस, अब फिटनेस पक्की है।
2: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
3: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ट्रेंडिंग को एक नंबर बनाने के लिए एक नंबर गाने तो जो है वो चलाने पड़ेंगे और वो चला रहे हैं, लेकिन ये क्या अभियान जो है वो चल गया अपने कतर में।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। 13 साल की एक ऑरेंज कैट जिसका नाम है रेक्स वो खो गई है, आप सबको पता है कि ये सबसे ज्यादा हमारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, क्योंकि अगर इसको कोई ढूंढेगा तो उसको 100,000 रियाल जो है वो मिलने वाले हैं, और इतनी सारी जो है वो यू नो इतना सारा अमाउंट जो है इसको देखने के बाद अनाउंस करने के बाद जो है वो अपने कदर में सर्च स्क्वाड जो है वो आ चुके हैं और सोशल मीडिया पे कंटेंट जो है वो भी बन रहा है, टिकटॉक वीडियोस बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं, मतलब फनी कंटेंट जो है वो भी बन रहा है। तो रेक्स जो है ट्रेंडिंग यार, मतलब मजे आ गए हैं। सोचो, मैं एक्चुअली ये सोचती हूँ कि रेक्स किसको मिलने वाला है, जिसको मिलेगा भाई साहब रेक्स जिंदगी बना देगा जिसको भी मिलेगा यार। 6:22 स्टूडियो की घड़ी में सुमरन गौरे आपके साथ, जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
0: मैं तो सोच रही हूँ रेक्स अगर किसी के सपने में आएगा तो उसके भी पैसे मिलेंगे क्या?
4: Where's the money? Let's dance.
5: Oh yeah.

0: It's love for money.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास
2: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
4: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
5: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
4: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट आज ही बुक करें धरोहर मिस मत करना
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
2: Zabardast evening. Make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

second hand Javani. Kya lyrics hai yaar? सिमरन कौर आपके साथ। भाई साहब, पैसे कमाने के क्या क्या तरीके जो है वो इस दुनिया में आ गए हैं। चाइना में जो यंग यू नो जनरेशन है वो अपने फेस को जो है वो रेंट पे दे रहे हैं, मतलब लाइसेंस दे रहे हैं। किस तरीके से, मैं बताती हूँ। सो AI जनरेटेड एड्स होती हैं, गेम्स होती है, शॉर्ट ड्रामाज होती हैं, तो उनके लिए जो है वो फेस की जरूरत पड़ती है, तो अपना फेस जो है वो रेंट पे दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो 14 लाख तक जो है वो कमा रहे हैं। सो या ऑफकोर्स ये क्या होता है कि जब आप AI जनरेटेड एड्स और गेम्स या शॉर्ट ड्रामास के लिए अपना फेस जो है वो दे देते हो, तो फिर वो उन सारी चीज़ों में जो है वो गेम्स में भी आ सकेगा आपका फेस, लेकिन आपका फेस एक्चुअली सिर्फ यूज़ हो रहा है, मतलब आप नहीं उसमें एक्टिंग कर रहे हो, आपका फेस जो है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो यूज़ हो रही है। लेकिन इसमें प्राइवेसी कंसेंट और ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे नहीं पता कि कैसे काम करती होंगी, लेकिन ये क्या चल

0: रेडियो ऑलिव कोर कहते रहो जियो बिंदास, जहां पर इस टाइम पे ये एआई के जमाने में हर लोग जो हैं वो इन सारी चीजों को लेके परेशान हैं, अपनी आवाज को लेके, अपने चेहरे को लेके, कि कहीं पे भी कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी यूज हो जाता है। यहां पे ये खुला न्योता दे रहे हैं यार।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा?
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, हमें सिखाया कि
1: मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6:50 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ यूज किया जाता है फोमो, जिसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक और वर्ड है वो है जोमो, यानी कि जे ओ एम ओ, यानी कि ये है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सो या ये जेंजी लिंगो जो है काफी कूल है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कुछ नए नए वर्ड जो है वो आपको सीखने के लिए मिलते हैं और हमें भी सीखने के लिए मिलते हैं और मजा आता है इनको यूज करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब किसी के सामने हम यूज करते हैं जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो सामने वाला पूछता है कि भाई तूने क्या बोला है, क्योंकि ये अंग्रेजी से हट के अंग्रेजी है जिसके मतलब आपको इतनी जल्दी नहीं समझ लगते यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास। रेडियो ओलिव पर
1: Song of the Year।

0: जैक मैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: हेलो नमस्कार मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ना मुझे,
1: क्या क्यूट गाना है यार ये। लव फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं
0: करो ना मुझे प्यार,
1: और आज इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। सलमान खान का बहुत ही कमाल का था, और जब कल बिग बॉस में बात कर रहे थे सलमान खान, वो बोलते थे कि मैंने प्यार किया वाला सलमान खान हमेशा नहीं रह सकता हूँ, सारी चीजें जो है वो चेंज होती है। सो या अगर बात करें लव वाले सलमान खान की, तो उस फिल्म का पहले नाम जो था वो लव नहीं रखा गया था, मेरे हमदम रखा गया था फिल्म का नाम। लेकिन सनम बेवफा, साजन, सारी फिल्म की सक्सेस के बाद सारी नजरें जो थी ना वो इस फिल्म के ऊपर थी। इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट किया, लेकिन उसके इस फिल्म के बाद काफ़ी टाइम तक 1994 तक सलमान खान का करियर जो था वो रिकवर नहीं हो पाया था। एंड इस फिल्म में दो एंडिंग जो थी ना वो शूट की गई थी, एक ट्रेजिक वाली और एक हैप्पी वाली। सो सलमान खान एंड रेवती इस फिल्म में जो हीरोइन है, तो दोनों के बीच में जो था वो झगड़ा हो गया था, क्योंकि दोनों अलग अलग एंडिंग जो थे वो चाह रहे थे। लेकिन इसमें फूफा जी बन गए थे अमजद खान, जो अमजद खान का रोल था इसमें, वो उसके लिए अपसेट हो गए थे, कहते कि भाई मेरा रोल जो था आपने शूट बहुत सारा किया था लेकिन मेरा रोल जो है वो बहुत पूरे तरीके से काट दिया गया था। तो अमजद खान ने डायरेक्टर से पूछा कि भाई रीजन मेरे को बताओ, तो रीजन उन्होंने बताया कि भाई फिल्म बड़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए हमने सीन काट दिया। तो लेकिन अमजद खान को बड़ा गुस्सा आया, वो बिल्कुल भी कहते कि आपने इतने इररिलेवेंट सीन्स जो हैं वो इसमें डाल दिए, थिएटर वाला सीन, एडवर्टीजमेंट वाला सीन, ये सीन तो होने चाहिए थे, आपने मेरा रोल काट दिया। वो सलमान खान को भी ब्लेम नहीं कर रहे थे, क्योंकि सलमान खान तब उतने मैच्योर नहीं थे कि उनका रोल कटवा दे, नाइदर सलीम खान को उन्होंने ब्लेम किया। लेकिन बहुत सारे जो कलेश थे इस फिल्म को लेकर जरूर हुए थे।
0: दिल है मुश्किल

0: ये रेडियो ओलिव गुड के जरिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
0: बड़ा ही खूबसूरत गाना है यार ये। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है लेकिन मैं रिक्वेस्ट नहीं ले रही हूँ, ये हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। आंखों से बताना। सो इसका काउंटडाउन शुरू करें। 3, 2, 1 एंड गो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardust evening, make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: आज का जो रियलिटी चेक है ना वो कल के बिग बॉस के एक सीन के साथ जुड़ा हुआ। आप सोचेंगे सिमरन कौर तुम भी बिग बॉस देखने लग गई हो यार और क्या बातें कर रही हो। सो मैं आपको बता दी हूँ उसमें ना कल सलमान खान का जब एक एपिसोड दिखाया गया परसों उसमें उनकी हेल्थ जो थी वो खराब हो रही थी ओके। एंड कल के एपिसोड में जब ऑलमोस्ट सब जो है वो रो देते क्योंकि सलमान खान सेट के ऊपर थे और उनको अचानक से दर्द हुआ और वो लेट गए एंड ऑल, तो जब मैं भी देख रही थी मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि आपका यू नो चाहे हमारा उनसे ब्लड का रिश्ता नहीं है लेकिन वो यू नो हम उनको बचपन से देखते हुए आए हैं, हीरो हैं, मतलब मेरे को पसंद है यार सलमान खान। एंड एक तरीके से उनको इस तरीके से देखना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, सारे लोग इमोशनल हो गए थे। बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सारे ज़्यादा वरीड थे और कुछ रोने लग गए थे। सो ये सलमान खान को एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ एक एक्ट किया था, उन्होंने काजी को एक लेसन देना था जिसकी वजह से क्योंकि वो काजी जो कंटेस्टेंट हैं इसमें और वो अपना फेक हेल्थ का दिखा के लोगों से सहानुभूति लेते हैं, यू नो इमोशनल सपोर्ट जो है वो लेते, तो वो उन्होंने एक एक्ट किया था कि ये चीज़ जो है वो गलत है। तो मैं रियलिटी चेक में आज आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप झूठ बोल के किसी से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। झूठ किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। आप अगर किसी भी तरीके से बोल रहे हैं तो सामने वाले को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसका आप फ़ायदा ले रहे हैं, तो ऐसा फ़ायदा कभी नहीं लीजिएगा क्योंकि सुनर और लेटर ये चीज़ें आपके पास आती हैं, आपको पहले नहीं पता लगता है, तो आप ये सोचेंगे अरे मैंने तो कितनी सफाई से झूठ बोल दिया, सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया, इट्स नॉट गुड यार। तो कभी भी किसी का नाजायज़ फ़ायदा झूठ बोल के नहीं उठाओ, वैसे भी नहीं उठाओ, झूठ बोल के भी मत उठाओ यार, सामने वाला इनोसेंट है यार, वो विश्वास कर लेता आप पे।

का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: जैक मैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ਜਿਗਰ ਤਾਲੀ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ तो अपना नाम तो बता दो। देखो डार्लिंग अब नेम गेम शुरू हो चुका है। नेम गेम का रूल ये है कि अगर आप चाहते हैं रेडियो पे सुनना आपका नाम तो आप मुझे अभी की अभी अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करेंगे, मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको बता दूंगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। नो हाय, नो हेलो, नो वॉइस नोट्स। चलिए बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। अंजलि जी, नौमान जी, लियाकत जी, वहीद जी, आसमा जी, सईद जी, मोहम्मद जी, यूसुफ जी, जिया उल हक, इस्माइल जी, थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजिए 3311063 पर। आपका शो लाइव है, ये सवाल है पूछने का, ये जगह है पूछने की, आपको सिर्फ नाम लिखना है अपना। सईद खादिम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। निर्मल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। काव्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच। सोनी जी, थैंक यू सो मच। अथर्वा जी, थैंक यू सो मच। क्रिस जी, थैंक यू सो मच। बाबू गुल जी, फैजल जी, थैंक यू सो मच। अतर अब्बास जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली अगला गाना शुरू होने वाला है। संदीप जी, थैंक यू सो मच। सैम्यूल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राहुल जी, थैंक यू सो मच। हैंजो क्रिस जी, थैंक यू सो मच। रुक्सी नुरैन जी, थैंक यू सो मच। रिहान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शाबाज जी, ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ। क्विकली नाम भेजिए 3311063 पर। मेहुल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करिश्मा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा, अब तो आप थैंक यू लिख सकते हो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेजिए। अगले घंटे हम खेलेंगे एक चुटकी सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

हाय जन्नत, हमने सुना है कि आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हमारी तरफ से, सिमरन कौर की तरफ से, रेडियो ऑलिव की पूरी टीम की तरफ से जन्नत को हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाइयां, मिठाइयां, बहुत सारे पटाखे, खुश रहो यार।

बहुत ही प्यारा गाना है यार। इस गाने के लिरिक्स सुनो ना तो कहीं ना कहीं पे हम सभी जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं इस गाने से। मनमर्जिया फिल्म से एमी वर्क दी आवाज थे शाहिद मालिया का जादू। ओए होए, ध्यान से सुनना, मजा आएगा और कुछ याद भी आएगा आपको। काउंटडाउन शुरू करें, 4, 3,

0: लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardust evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: मत भेजाइए, म्यूजिक को थोड़ा सा फील करके बताइए।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: सो एक चुटकी सॉन्ग एक कॉन्टेस्ट है जिसमें मैं आपको एक चुटकी भर गाना जो है वो सुनाती हूँ और आपको गेस करना होता है कि ये गाना कौन सा है। तो इसके लिए आप अपने फोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं ताकि मैं तो एक या दो बार ही आपको सुनाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ लग रहा तो 4 से 5 बार जितनी बार आपका मन करे आप सुन सकते हैं और फिर उसके बाद गेस कर सकते हैं कि गाना कौन सा है। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है, चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ। बताओ ये कौन सा गाना है, लेकिन बताने के लिए आपको वो अपना वॉइस नोट वाला मोड जो है वो ऑन करना है, लिखना नहीं है। सो वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए एकदम एनर्जी के साथ। हे सिमरन, अपना नाम बताइए, गाना गाना है या बोल के बताना है वो आपकी चॉइस है। भेज दीजिए 3311063 पर। एक बार वापस से, चलिए फिर सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोड के जरिए। जियो बिंदास, नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ 3311063।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: यार अमित त्रिवेदी का ये मधु वाला गाना बहुत प्यारा है यार, आपने इसको अक्सर रील्स पे सुना होगा।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: ਸੁਣੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: और एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको एक चुटकी वर्ड सॉन्ग सुनाया था चलिए अब आप लोगों के जवाब सुनते हैं
3: हाय सिमरन
0: हाय
3: दिस सॉन्ग इज दिल दीवाना बिन सजना के माने ना
0: थैंक यू सो मच जी
4: सिमरन जी सईद बोल रहा हूँ
0: और
4: ये गाना है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना
0: शुक्रिया जी
5: Hey Simran,
0: Hi.
5: संजय मुद्गल बात कर रहा हूँ और ये गाना है दिल दीवाना बिन सजना के

0: from the movie Maine Pyar Kiya, Radio Olive, Jio Bindas.
1: Beautiful, yaar. Thank you.
2: Hi, Simran.
1: Hi.
2: Nana hai Dil Diwana Bin Sajna Ke Maane Na.
1: Thank you, ji.
3: Vidya Manoj here, and the song is Dil Diwana.
1: Thank you. Hanji.
4: Hi, Simran. How are you?
1: Good, yaar.
4: And this song is Dil Diwana Bin Sajna Ke Maane Na. ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना
1: सही है यार बजाइयों में चंगे ने बहुत सारे बटा गया आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा यार

0: देर में सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोल्ड गैदर। ये जियो बिंदास
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा।
2: बॉलीवुड की अल्टीमेट डीवा द ओजी पू, जिन्होंने हमें सिखाया कि
1: मैं अपनी फेवरेट
2: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को रेडियो ऑलिव विश करता है

0: Dehan number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jiya
1: Bindas. Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

का क्या ही तो गाना है यार, सुनिधि चौहान ने क्या ही गा दिया। लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने भी सुना के जाऊंगी।

अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा। अपनी मुलाकात होती है शाम को, कल 5 बजे आराम से मिलेंगे, आप ऑफिस से फ्री हो जाओगे। ठीक है, अभी के लिए खांदे पिंदे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. यू नो, सोशल मीडिया पे आप हर दिन कुछ नया देखते हो और नया देखने के बाद या तो आप उसे मतलब बस भूल जाते हो और आगे बढ़ जाते हो, या फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार काश मैंने भी ये सब किया होता. सो आई वॉज वॉचिंग वन पोस्ट जिसमें कुछ कहानी थी, और कहानी थी 9 साल की गुल्लक और अपना प्लॉट खरीदने की. सो बेसिकली कभी आपने सोचा है कि आपकी बचत वाली गुल्लक अगर सालों तक खुले ही ना तो उसमें क्या निकलेगा? कुछ पुराने सिक्के, कुछ नोट, या शायद आपका अपना सपना. सो इंडिया की ही एक लड़की है जिसने 29 ईयर्स की उनकी एज है, एंड कहानी ऐसी थी इतनी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने 2017 से अपनी जो भी उनकी इनकम हुई अभी तक, इट्स ऑलमोस्ट 9 ईयर्स राइट, कुछ हिस्सा लगातार उन्होंने सेव किया. कभी अपने घर की गुल्लक में, कभी पुराने कपड़ों के जगह पर, कभी थोड़ा थोड़ा यू नो गोल्ड बाय किया, और फिर अभी जब उन्होंने वो सारा पैसा इकट्ठा किया 2026 में, सो उन्होंने कहा कि अब वो अपने नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीद रही हैं. एंड आई वॉज लाइक 9 ईयर्स, पता भी नहीं चलता यार कब निकल जाते हैं. और मुझे इस कहानी का सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि उन्होंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट फार्मूला नहीं अपनाया जैसे आजकल के फिनटेक आपको बताते हैं. बस एक बार जो कमाया उसमें से बचाया और उस बचत को छुआ भी नहीं. हम अक्सर बड़े सपने देखते हैं और सोचते हैं कि इतने पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे. शायद कभी कभी सपना बड़ा होने से पहले उसके लिए बचाया गया पहला छोटा सा अमाउंट भी ना बहुत बड़ा होता है. सो आज आप अपने आप से पूछिए कि अगर आज से किसी एक चीज़ के लिए आप सेविंग शुरू करें तो वो क्या चीज़ होगी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मिडनाइट नाउ शुरू हो चुका है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आज एक ऐसी बात करते हैं जिस पर शायद आपके घर में भी डिबेट हो सकती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। प्रियंका चोपड़ा ने अभी बहुत ही रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि हाउस होल्ड चोर्स जो हैं उनको लेकर एक सीधी बात बोली। कुकिंग और क्लीनिंग किसी भी एक जेंडर का काम नहीं है, बेसिक अडल्टिंग स्किल्स हैं। और ऑनेस्टली ये बात सिर्फ विमेन या मेन की नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कोई आपको ऑफिशियली नहीं सिखाता कि आपके कपड़े आप कैसे मेंटेन करोगे, घर कैसे चलाना है, बिल कब भरना है, खाना क्या बनाना है। और स्पेशली जो लोग कतर में रहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि यार डजंट इवन मैटर कि आप लड़के हो या लड़कियां, आपको ये सब करना ही पड़ता है। और सबसे मुश्किल घर में क्या खत्म हो गया ये कैसे याद रखना है। इसमें से कई सारे लोग हैं जिनको डिग्री मिल गई है याद रखने के लिए, लेकिन घर चलाने की डिग्री अभी भी पेंडिंग है। और शायद यही असली अडल्टिंग है। आपके लिए खाना बन पाना, आपका कमरा साफ रखना, अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना। सो आज मिडनाइट लाउंज पर सवाल है आपके लिए कि आपको जिंदगी की कौन सी बेसिक स्किल बहुत देर से सीखनी पड़ी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: ये है मिडनाइट लव।

आज बॉलीवुड जो है उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। इंडिया की 2027 ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री बनी है मराठी फिल्म गोंधाल। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे 33 सबमिशन में से एक चुना है और फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। कहानी महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल गोंधाल फोल्ड परफॉर्मेंस ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है जो मैंने नहीं देखी है, बट आई विल सर्च और मैं उसका हिंदी डब जरूर देखूंगी। अगर आपने भी नहीं देखी है तो गो एंड वॉच। और मुझे ये खबर इसीलिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इंडियन सिनेमा को हम अक्सर एक ही नाम से पहचानते हैं, विच इज बॉलीवुड, लेकिन इंडिया की स्टोरीज उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। मराठी में अपनी दुनिया है, मलयालम सिनेमा की अपनी स्टोरी टेलिंग है, तमिल, बंगाली, असमी, मराठी, तेलुगु, हर लैंग्वेज अपने आप में एक अलग यू नो स्टोरी और कल्चर दिखाती है। और शायद आज का सिनेमा ना हमें यही बताता है, अच्छी कहानी को अपनी लैंग्वेज बदलने की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक ऐसा सच बोलना होता है जिसे दुनिया समझ सके। एंड आई विल से कि भाई मैं तो इसका हिंदी डब ढूंढ लूंगी। आप मुझे बताइए कि आप कब देखने वाले हैं, आपकी फेवरेट रीजनल फिल्म कौन सी है जिसे आप चाहते हैं कि पूरा इंडिया नहीं बल्कि हर कोई देखे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिड नाइट लाउंज,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आप फिल्म थिएटर में देखने जाओ और फिल्म बिना इंटरवल के लगातार 3 घंटे चलती रहे, आप खुश होगे या परेशान? आज OTT ने हमें एक लग्जरी दे दी है, पॉज करो, उठो, पानी पियो, वापस आओ और कहानी वहीं से शुरू. लेकिन पुराने सिनेमा एक्सपीरियंस में इंटरवल सिर्फ ब्रेक नहीं था, वो फिल्म का हिस्सा था. कहानी अचानक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर रुकती थी, लाइट्स चलती थी और पूरा थिएटर एक साथ डिस्कस करता था कि अब आगे क्या होगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो इस ब्रेक में हर किसी के अपने अलग अलग तरीके होते थे, लेकिन असली मजा था कि फिल्म देखने वाले सारे लोग उस एक मोमेंट में एक कम्युनिटी बन जाते थे. आज हम घर से अकेले सीरीज देखते हुए पॉज कर लेते हैं, लेकिन थिएटर को वो कलेक्टिव रिएक्शन चाहिए था, वो पॉज बटन से नहीं बनाया जा सकता था. सो यू टेल मी, आपको फिल्म में इंटरवल पसंद है या आप कहानी को बिना रुके देखना चाहते हो? बाय द वे, कतर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मूवी में ब्रेक आ रहा है. यू नो एवरीथिंग हैज़ लॉट ऑफ न्यू ऑप्शंस. मतलब आप चाहो तो फूड वहीं के वहीं पर ऑर्डर कर सकते हो, आप चाहो तो आप यू नो जो भी खाना चाहो आपको थिएटर में मिल जाता है. सो आपको ऐसा ब्रेक की ना ज़रूरत ही महसूस नहीं होती. बट यू टेल मी कि आपको ब्रेक के साथ मूवी पसंद है या फिर विदाउट ब्रेक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.

कभी कभी ना हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस थोड़ी सी राहत चाहिए होती है। मैट हेक की किताब है द कम्फर्ट बुक, इसी आइडिया के आसपास है, छोटे थॉट्स, ऑब्जर्वेशन और रिमाइंडर्स जो जिंदगी के डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग मोमेंट में थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दे देती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। और मुझे ना इसका एक आइडिया बहुत रिलेटेबल लगता है, हम हमेशा अपनी जिंदगी को फिक्स करने के बारे में लगे रहते हैं, लेकिन हर दिन फिक्स करने के लिए नहीं होता। कुछ दिन बस ऐसे होते हैं जब आपको आराम चाहिए, एक कप चाय चाहिए, आपका फेवरेट गाना चाहिए या किसी अपने से 10 मिनट की बात करनी है, और शायद ये है सेल्फ केयर का हिस्सा। हम अक्सर हैप्पीनेस को ना कोई बड़ा अचीवमेंट समझ लेते हैं कि यार ये मिल गया ना लाइफ में, बस खुशी खुशी, लेकिन कभी कभी हैप्पीनेस बस इतनी सी होती है, आज मन थोड़ा हल्का हो जाए। और आई विल से कि मिडनाइट लाउंज में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में वो छोटी सी चीज़ क्या है जो आपका मूड ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही जल्दी बेटर कर देती है, तो क्या बोलोगे आप? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

अगर आप भी मेरी तरह किताबों के शौकीन हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। 2026 क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड की लॉन्ग लिस्ट आ चुकी है। 5 कैटेगरीज में 50 टाइटल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ट्रांसलेशंस, बच्चों की किताबें और बिजनेस एंड मैनेजमेंट की किताबें। और लिस्ट इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ नॉवल्स नहीं है, हिस्ट्री है, सोसाइटी पर बुक्स हैं, ट्रांसलेशंस हैं, बिजनेस की कहानियां हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको लगेगा कि आप बस सोचते ही रह गए और देखिए लोगों ने क्या क्या कर लिया। और टेक्नोलॉजी और डिजिटल कल्चर पर भी किताबें हैं, यानी किताबें भी हमारी दुनिया की तरह बदल रही हैं। हम सिर्फ फिक्शन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी कैसे बदल रही है, यू नो टेक्नोलॉजी हमें कैसे चेंज कर रही है और हमारा अपना पास्ट क्या कहता है। लेकिन एक चीज़ आज भी वही है, एक अच्छी किताब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो कभी कभी आपके दिमाग में एक नया सवाल यू नो खड़ा कर देती है। और आज आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया था। बाय द वे आई हैव लॉट ऑफ बुक्स जो मुझे पढ़नी है, जिनसे मुझे कुछ सीखना है, और इन किताबों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है काश यू नो कुछ टिप्स भी होते कि किस तरह से इन्होंने अपना काम शुरू किया, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई नया आइडिया हो। यू टेल मी कि ऐसी कौन सी किताब है जो आपको बड़ी मज़ेदार लगी है अभी तक। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सो एक किताब है पीको आयर की द आर्ट ऑफ स्टिलनेस, और इसका पूरा आइडिया आज ही फास्ट लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है, मतलब जो भी आज की लाइफ है उससे ऑपोजिट। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। हमारे पास ना हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है, फोन पर नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड में म्यूजिक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, काम, और अगर 5 मिनट कुछ ना हो तो हम खुद ही फोन उठा लेते हैं। लेकिन किताब हमें एक सिंपल आइडिया की तरफ लेकर जाती है। कभी कभी कुछ ना करना भी प्रोडक्टिव हो सकता है, बस खिड़की के पास बैठना, चाय पीना, बाहर देखना, या 10 मिनट किसी स्क्रीन के से दूर रहना बेसिकली, क्योंकि जब बाहर का नॉइज थोड़ा कम होता है तो अंदर की आवाज सुनाई देती है। और शायद आज की जिंदगी में साइलेंस जो है वो लग्जरी नहीं जरूरत बन चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे फोन का टाइमिंग देख के कि काश फोन बना ही ना होता। सो आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, आप बस अपने थॉट को देखिए और अपने दिमाग से कुछ नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए। फॉर नाउ आई हैव टू से कि आने वाला गाना इसे एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लाउंज ये है मिडनाइट लाउंज
0: यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas

में हमने मैथ सीखा, हिस्ट्री सीखी, ग्रामर भी सीखा, लेकिन लाइफ ने बाद में आकर अपना सिलेबस मतलब चेंज ही कर दिया। जैसे किसी को ना कैसे कहना है, गलती होने पर एक्सक्यूज मी के सॉरी कैसे बोलना है, सैलरी नेगोशिएशंस कैसे करने हैं, किसी दोस्त को या किसी दोस्ती को ग्रेसफुली ख़त्म कैसे करना है, और जब कोई आपसे आगे निकल जाए तो जेन्युइनली उसके लिए खुश कैसे होना है, और सबसे मुश्किल जब कुछ समझ ना आए तब खुद को संभालना कैसे है। इन चीज़ों को कोई एग्जाम नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन शायद यही स्किल्स हमें बड़ा बनाती हैं, क्योंकि एजुकेशन आपको दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको अपने बारे में सिखाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो मेरे जाने का टाइम हो गया है। विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आई विल से कि अपने लाइफ की ऐसी कौन सी चीज आपने सीखी है जो आपको लगता है कि स्कूल में जरूर सिखानी चाहिए थी। सो यू जस्ट यू नो व्हाट्सएप मी ऑन 3311063। मैं हूँ वहाँ पर व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।